त्यो पनि ककबुरक पाण्डा पाण्डा आवाज खेलाइदिए दङ सारदा पोइन्ट मेगा हर्ट्स दिनैहानि हाइनि हाइ नों बाइ कतार कासे कक सानाहानि आं फाइपिका पहिला जों मतान रबै रेजाब मुंनि बिसिंग्रि दिनै नङा पाण्डा नो जेंगिरि लायनाय आबुनि लहंके हाइन हाइ सालकामानि पाण्डा नङै कक सालायनाय गोजाराव हाइनि खरां हाइनि खरां पाण्डानि यागुल' हाइन हाइ नों बाइ कक सालायफिनाय हांगांगे पहिला फाइदि जों मतान रबै रेजाब मुंनि बिसिंग्रि दिनै नङा पाण्डा नो जेंगिरि लायनो हाइदि हांगांगे दिनै बागै पहिलायाव न' अरेजाब मुं

0: मारे के जिन सामने सिकांग वन सूगी जिन सामने नांगो नैनी बाय अपनी बाई हम ये बुख लाइमनो का हम बुख लाइमनो नान बगई तीन साल नो संग मुझे नारे जो तो नो बरक नो खरसे खरसा यार किचिंग टोंगो मारे टोंगो हाइपनो आजागो ओम हाइनो मारे किचिंग हंगांगे यार हंगांगे ओम हाइनो नांगो जेनेनी हम ये जरो निन लगे टोंगनाई जिन अब हाइनो नहालाइनाई जे बरक चीनी हम ये जरो संग बाई टोंगनाई इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे तीन सालो नरल जतन खा कहमटे हमबाई जो मारे किचिंग कहमके टोंगलाई दी तेई अम हाइनो जो दिनें यार मारे जो रुतुग्लाई जिने विशिंगे जिने कहम नाइने है ना आं तीन कक्साई तमें हिंगे जिन मोबाइल स्मार्टफोन चीन बाई बस कहमिया बा चीनी कहमो जो यूज खाई कहम अंगाई नंग हमियाओ नंग सूखे अब हमिया अब नहीं थाने नंबर बाहिके ना हाई हमिया तो नाई ना कहम के ना हाई नंगे ताहनी वनसुक चीनी स्मार्टफोन चीनी सबुर अजर बेलेखनो नागो हाईपनो आ नांगमान बिशिंगी फनो जंग बनो चीनी सरारक बेलेखनो हमिया बहक थी तो मनगो बेड हेबिट खाने जो नगो अम हाईगो जो किसानो तब अजर चीनी अम हाई मोबाइल यूज खाई मन बगे हमिया लामा जो थानो नंगे ताहनी वनसुक नंग बाहर सजेस खाने चीनी खाने जाने ताको बुक जनो स्मार्टफोन जो यूज खाएंगे कबां के यूज खाएंगे जतन तो यूज खाए हाइपनो अब मिस यूज खाएंगे यूज तो जो जतन खाई नागो तबने अजर कि मिस यूज ता खाई दी आम दिन सामने मैसे ठीक से कौदू नाइने गा
1: मडार्न एज जतना 25th सेंचुरी जो हाबजाक 5G हाबजाक

जादुनि रिचाब मुरों के गोबां कुकनो लांमाबाय गोरों जाग्रोचाब मुरों नंगु टंगथगमुं खाकामुं बिरमान अबरक बेफाखनो अजादो कलिजाव बुलजागै थांगु आव कलिजानि नखरमा कक सेंगाङे बा काहाम हामया बेफाखसो दंनाय अबहायनो जादो कलिजाव हंगांगे टंगथगमुं रोगनि एहु खरांगांगे किसा तांगबिति रगोसे एबा खेबा चस्माइनि रगोसे नुजाबो फियाबा जों खरक्सा एबा खेबा खरक्सा दाखुक एबा बुखुक ब सैजों सैजों सल' रजाबुं रजा प्रंगांगाय मुंनि खाखा मुंनि कक रगसे गोबां खुबनो पेपलाइ फाइमानि नुजागु गे फायदे अजराव जों डुएट रजादुनि एबा खेबा खरकनि खे रजा जाग्रा जामुं खोनालायानो चिनि मुखुक सांखु मारिबाय शम्भु रामनि रोजाब जाग रोजाब खोनालायनो खरंनिखे रोजाब जाग रोजाब मुंखौ तामा रोजाबै खोनायनानै नायखा

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: ভিডিওতে লাইক করলে টাকা পাওয়া যাবে। এত সোজা
1: ফাঁদে।
2: অচেনা অজানা লিঙ্কে কখনো ক্লিক করবেন না। আরবিআই এ কথা বলে,
0: জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন।
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5,00,000 तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।